आशिक मिन मिन हाबी कुश की जिल जिल बीबी बिन दुन हुलुआ रिंग जिंग जिन जिन ना पसी की हलुआ ली भूम्बा।